अपने हिरदे विच उस परमात्मा की भाल कर ते एवें घबराहट विच ना भटकदा फिर। ये दुनिया एक जादू का तमाशा है ते जिवें जादू के तमाशे चों कुछ भी प्राप्त नहीं हुंदा उसी तरह इस जगत विचों भी तैन कोई चीज़ प्राप्त नहीं होने वाली। बेद कतेब इफ्तरा भाई दिल का फिक्र ना जाए टुक दम करारी जो करो हाजर हजूर खुदाए। हे भाई बेअर्थ बहस करन लई बेदां कतेबां दे हवाले दे के एवें फजूल गल्लां करन नाल दिल का सहम दूर नहीं हुंदा। तुसी अपने मन नूं पलक भर भी टिका लो ता तुहानू सबना विच रब वसदा दिस पएगा। दरोग पढ़ पढ़ खुशी होए बेखबर बाद बकाहे हक सच खालक खलक म्याने श्याम मूर्त नाहे। बेसमझ लोग दूसरे धर्मां दीआं पुस्तकां पढ़ पढ़ के कि इन्हां विच जो लिखिया है वह झूठ है खुश हो के बहस कर रहे हन, पर सदा थिर रहण वाला परमात्मा सबना जीआं विच वस रहा है। ना तो वह सतमें आसमान ते बैठा है ते ना ही कृष्ण दी मूर्ति विच है, वह तो सर्व व्यापक है। आसमान म्याने लहंग दरिया गुसल करदन भूत कर फकर दायम लाए चश्मे जह तहां मौजूद। सतमें आसमान विच बैठा समझण दी थां ते हे भाई ओ प्रभु रूप दरिया तां अंते करन विच लहरां मार रहा है, तू उस विच इशनान करना सी, सो सदा उस दी बंदगी कर, ज्ञान रूपी ऐनक ला के वेख, वो हर थां मौजूद है। अल्लाह पाकं पाक है शक करो जे दूसर होए, कबीर कर्म करीम का वो करै जाने सोए। इस गल विच कोई शक नहीं कि परमात्मा सब तो पवित्र हस्ती है। मैं इस गल विच तां शक करा जे उस वर्गा कोई होर भी होवे तां। हे कबीर ओ मनुख ही ये गल समझ सकता है जिसनू वाहिगुरु समझण योग कर देवे। ये बख्शिश उस परमात्मा दे अपने हाथ विच है, इसलिए बंदे खोज दिल हर रोज़ ना फिर परेशानी माहे।

0: शुक्रिया जी।
1: सत्यो हफ्ता भरी का महफल दे विच हुण मैं थोड़ी जान पछाण पंजाबी दे नवे उभर दे शायर तलविंदर शेरगिल जी नाल करवाउण जा रहे हां। तलविंदर शेरगिल जी जिला शहीद भगत सिंह नगर दी तहसील बंगा दे नेड़े वसदे पिंड गुणा चौर तो हन। बहुत वधिया शायर ने। इहदे नाल दी नाल उहनां दे इक लिखे हुए गीत पंजाब सिआं नूं साडे गायक कृष्ण ही उन्हें गाया है जिहड़ा इस वेले पंजाबी दे स्रोतियां दी बड़ी पसंद बनिया होया है। ते इहो जे वधिया रचनावां दे रचनहारे तलविंदर शेरगिल नूं असीं दुआबा रेडियो दे मंच ते निगाह जी आया कहिंदे हां।
2: हिफाजत अपने साहां दी एदां कर रहे हां, हिफाजत अपने साहां दी एदां कर रहे हां, जदों भी जंग होई है सदा ही कर रहे हां, जदों भी जंग होई है सदा ही कर रहे हां। तुहानू वहम है एवें अजल तों सौ रहे हां, तुहानू वहम है एवें अजल तों सौ रहे हां। असीं तां नींद विच खाबां दी राखी कर रहे हां, असीं तां नींद विच खाबां दी राखी कर रहे हां। कुताही तां पता लगे किवें रुस्से ने दरिया, कुताही तां पता लगे किवें रुस्से ने दरिया। असीं तां खारियां खूहां चों पाणी भर रहे हां, असीं तां खारियां खूहां चों पाणी भर रहे हां। किसे भी बुत घाड़े ने असानू रब ना कीता, किसे भी बुत घाड़े ने असानू रब ना कीता। जुगां तों ही असीं राहां च पए पत्थर रहे हां, जुगां चों जुगां तों ही असीं राहां च पए पत्थर रहे हां। मिले वरदान ही कारण असाडी मौत देने, मिले वरदान ही कारण असाडी मौत देने। खुशामद रब दी करनों तदे तां डर रहे हां, खुशामद रब दी करनों तदे तां डर रहे हां।
1: ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਾਮ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ। ਹੈਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅਵੱਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਸਾਹਿਤ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਾਮ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗਾਈ ਹੋਈ ਗਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੈਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ।
3: ਹੈਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ੇ ਖਿਦਮਤ ਹੈ ਸ਼ਾਇਰ ਜਗਦੀਪ ਹਸਰਤ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਗਜ਼ਲ।

खेड़ी में खुदाई मंगली, ओ खेड़ी में खुदाई मंगली, रब्बा पता हुंदा तेरे जे मकान दा तैनू।

जेड़ा कपड़े करे करोड़ा बिच बस ओनू लीडर मन देने। पेन बैंक च 2 रुपया दा जेनू तागे दे नल बन देने। जिथे रब कर संगता जुतियां नू, जिथे रब कर संगता जुतियां।

मैनू दे के थोड़ा जहर जावी, नी मैं बुरा बुरियाइयां नू तू हमेशा याद रखी।

जेकर मैनू मिलना होया मेरी मड़ी ते पिछले पैर जावी, नी मैथों वक्ख होण तो पहला मैनू देके थोड़ा जहर जावी।

मैं सदा तेरे रादार उड़ाने हानी निकल गया रादार उड़ा मंजिल दे वाले चले सी नी मंजिल दा हुन राए थोड़ा मैं सदा तेरे रादा डोड़ा रेहानी निकल गया रादा रोड़ा मंजिल दे वाले चले सी नी मंजिल दा हुन राए थोड़ा मेरे कुप हनेरे नू

किसे पागल इशक दे विच होके विच होके हाय विच होके किसे पागल इशक दे विच होके पत्थर खा के जिस्म छिला लेते किसे आशक बन के नैर पुटी हाय नैर पुटी किसे आशक बन के नैर पुटी पट इश्क दे पर ना गई सीते इस कड़ी दो कड़ी दे इश्क नेता है इश्क नेता इस कड़ी दो कड़ी दे इश्क नेता कारोबार नु दिते लो आप लिते किसे चढ़

एहसास करो ओ मेरी माँ है कंब दी, जद हवा चलेगी ठंडी तन नो चंब दी, एहसास

साथ सफर का रूठे ना, रूठे अगर तुम ना लेना। साथ सफर का रूठे ना, रूठे अगर तुम ना लेना। मौका हरगिज़ ना तू गवाना, हंसते गाते दिन बिताना। हाँ जिंदगी ये कहेगा तू गाना, हंसते गाते दिन बिताना। एक दिन ऐसा आ जाएगा जिस दिन तू चुप हो जाएगा। एक दिन ऐसा आ जाएगा जिस दिन चुप तू हो जाएगा। इस बात को भूल न जाना, हंसते गाते दिन बिताना। हाँ जिंदगी ये के

अपने वीरान माए रल के मैं रेंदी सी, तेरे कर बैठी माए दस तेनू की कहंदी सी, जुदा अपने तो कीता माए, जुदा अपने तो कीता माए, तू तो दुख भी ना फोले नी, हुन लुक लुक क्यों रोनी माए कंधा दे ओले नी, तिया तन ने बेगाना माए, तिया तन ने बेगाना माए, सच कर दी।

एक ऐसा फर्ज निभाया तू, सारे बुक बुक रोंदे माए, सारे बुक बुक रोंदे माए, मोहो कोई ना बोले नी, हुन लुक लुक क्यों रोनी माए, कंधा दे ओले नी। छड़ चली अज माए, छड़ चली अज माए, बाबले दी गली में, जी पर के रोवांगी माए, सोरे बैठ के कली में, छड़ चली।

जे डुब गई जे संतरी जांदे, ओ डुब जाना अजे भी बादे करी जांदे। सूली उत्ते चढ़ के मैं ता जरकिया भी नहीं, सूली उत्ते चढ़ के मैं ता जरकिया भी नहीं। ओ अपने परछावे तो

जिंदवादियां चे डूब गई, जिंदवादियां चे डूब गई, जे संतरी जांदे ओ डूब जाना, अजे भी वादे करी जांदे। चुक लवां जे सिरे ओदा निकल जाए दम, चुक लवां जे सिरे ओदा निकल जाए दम, की करां जे आपे चे की करां।

जे डूब गई जे संतरी जांदे, ओ डूब जाना जे भी वादे करी जांदे। जोर ना मंगदे नहीं आपी भला देवे क्यों, जोर ना मंगदे नहीं आपी भला देवे क्यों। गली बाती जे सदा

ओ डूब जाना अजे भी वादे करी जांदे। भगत सिंह ते कातलां दी गल पुरानी आख दे, भगत सिंह ते कातलां दी गल पुरानी आख दे। ए कौन जो हक्कां लई, ए कौन जो हक्कां लई सूली चढ़ी जांदे। ओ डूब जाना अजे भी वादे करी जांदे। जिंद वादियां चे डूब गई, जिंद वादियां चे डूब गई जिस्म तरी जांदे। ओ डूब जाना अजे भी वादे करी जांदे। जिस चेर तेरा ऐ जिस्म लोहा हुंदा लाखा नहीं, जिस चेर तेरा ऐ जिस्म लोहा।

मैनू जानी ना तिला बौकर बन के हूंज देऊं, जे आकड़ छड़ी ना अपनी तैनू नक्शे तो पूंज देऊं, जे आकड़ छड़ी ना अपनी तैनू नक्शे तो पूंज देऊं, मैं पक्षियां दी झल नहीं।

गल तेनू साड़ी मननी ही पैनिया, आकड़ जो तेरी पननी ही पैनिया। गल तेनू साड़ी मननी ही पैनिया, आकड़ जो तेरी पननी ही पैनिया। असी दिन रात

0: ईयर 38 साल दी एज रहती है, तब
1: अच्छा जी,
0: बच्चे ओदे लिए अप्लाई कर सकते ने। बस एक शर्त है कि उन्हां दा एक टेस्ट हुंदा हुंदा है
1: अच्छा जी,
0: जी, जिदा बल्क च निकलनगियां पोस्टां, 800 पोस्टां निकलियां, 1000 पोस्टां निकलियां, जिन्नियां भी निकलियां, बट ओदे लिए ना एक टेस्ट लैणगे ओह थ्योरेटिकल। उस टेस्ट दे बेसिस ते, मेरिट लिस्ट दे बेसिस ते उन्हां दी इंटरव्यू होएगी, फिर उन्हां दी फाइनल सिलेक्शन होएगी।
1: अच्छा
0: इस
1: जी,
0: करके बच्चों का थियरी पार्ट के उपर भी होल्ड होना उन्ना ही जरूरी है जिन्ना कि उन्होंने फिजिकल स्किल्स, जेडे उन्होंने हैंड स्किल्स दे, ओदे विच होना जरूरी है।
1: मतलब ये हैगा भी कला कोर्स कर लिया, सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया, ओदे नाल नहीं गल बननी।
0: जी
1: जे
0: बिल्कुल
1: विद्यार्थी जिहड़ा हैगा भी हत्थी कम करना भी सीख जांदा है, ते नाल ओह पढ़ाई दे विच भी ओहनू सीख जांदा है, थ्योरी भी सीख जांदा है, तां ओहदे लई वधिया मौका हैगा।
0: हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। ते इहदे नाल एक होर चीज भी मैं ऐड करदी हाँ, जिदा अपने इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने, आर्मी
1: हाँ
0: हो
1: जी,
0: गया, इंडियन नेवी हो गया, एयरफोर्स, BSF, CRPF भी जिवें मैं दस्सिया, ते होर जिन्नियां भी अपनियां फोर्सेस कम करदियां ने इंडिया दे विच, ओहदे विच भी साडे इदां दे जिहड़े ITI होल्डर्स ने उन्हां लई पोस्टां निकलदियां ने, बल्क दे विच पोस्टां निकल, उन्हां दे विच भी अकॉर्डिंग टू वैकेंसी पोस्टां निकलदियां ने, ओहदे
1: अच्छा
0: लई
1: जी,
0: भी अप्लाई कर सकदे ने बच्चे।
1: अच्छा जी,
0: हां जी, तां स्कोप बहुत ज्यादा है, तां इत्थे ए चीज जरूरी है कि बच्चियां दे विच नॉलेज प्लस स्किल दोनों चीजां दा होना बहुत जरूरी है।
1: हाँ
0: ते
1: जी,
0: एक थर्ड चीज कि बच्चों नू अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है कि केड़ी पोस्टां निकलियां हुई ने, केड़ियां स्टेट दिया या सेंटर गवर्नमेंट दिया पोस्टां निकलियां ने, या फिर किसी डिफेंस सर्विसेज दे विच, डिफेंस फोर्सेस दे विच पोस्टां निकलियां ने,
1: हाँ
0: तां
1: जी,
0: इहदे लई भी बच्चों नू थोड़ा अप टू डेट रहना बहुत जरूरी है।
1: हाँ जी, हाँ जी। अच्छा एक गल मैडम दसो, भी जिस तरह आपां देखदे हैं भी बहुत वड्डी गिणती दे विच ETT करी फिरदे ने विद्यापक बनण दे लई, इसी तरह जिहड़ा हैगा BEd करी कर रहे ने, BA MA अगे उचेरी पढ़ाई भी करदे ने,
0: हाँ जी,
1: फिर भी वो धरने मुजहरे करदे रहिंदे है नौकरियां लैण लई।
0: हाँ
1: इहदा
0: जी,
1: मतलब ये खेतर सौखा नहीं हैगा जी इधर आउणा।
0: हाँ जी, एक खेतर सौखा भी जरूर है ते थोड़ा रास्ता भी कट है इहदा, असीं
1: हाँ
0: कहीए
1: जी,
0: कि तय करन दे लई, इहदे लई बहुत ज्यादा लंबे साल नहीं लगदे हैगे सानू,
1: हाँ जी,
0: रास्ता भी कट है ते
1: फिर
0: ओह
1: इधर
0: भी
1: कट क्यों आउंदे ने नौजवान?
0: ए चीज भी हैगा, कट ता नहीं कह सकदे, बट कंपैरेटिवली जेहड़े बच्चे करदे हैं ITI, उहनां नूं अवेयरनेस नहीं हुंदी कि केहड़ियां पोस्टां निकल गईआं ने,
1: अच्छा
0: असीं
1: जी,
0: इहनां लई अप्लाई भी कर दिंदे ने जे बच्चे पोस्टां,
1: हाँ
0: तां
1: जी,
0: ओह बच्चे तैयारी नहीं करदे टेस्ट दी,
1: अच्छा
0: ते
1: जी,
0: जिहदे नाल ओह पिछे रह जांदे ने, फिर ओहदे करके ना कोई जिद्दां हो नहीं जांदा कि नहीं ITI वाला तां ओह देख लैंदे ने लोक, देखो देख के ITI फलाने कीती सीगी ते ओह फ्री है,
1: हाँ
0: ते
1: जी,
0: हुण असीं ITI करांगे तां असीं भी फ्री हो जाणा है, इस करके ITI, इस करके भी बच्चे काफी सोच लैंदे आ कि हो सकदा है कि भी है ना 10 पढ़े लिखे नूं या 12 पढ़े लिखे तो बाद कोई कोर्स करके किदां नौकरी मिल सकदी है, जदों के है ना BEd करे हुए बैठे वेले बैठे हैं,
1: अच्छा जी,
0: ये भी थोड़ी मेंटेलिटी साडी हो सकदी है, बट ये चीज नूं साडे दिमाग च नहीं आना चाहिए, क्योंकि हरेक स्ट्रीम दा एक वक्खरा स्कोप है, टीचिंग
1: हाँ
0: है
1: जी, हाँ जी,
0: ओहदे विच बहुत कंपटीशन है, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा विच लोग जिहड़े ने टीचिंग जिहड़ा प्रोफेशन है ओहदे विच आउणा चाहुंदे ने,
1: ठीक है,
0: कंपैरेटिवली इहदे विच बहुत घट है, क्योंकि ज्यादा बच्चे सोचदे नहीं है कि इन्ना जल्दी असीं इंप्लॉयबल हो जाएंगे, या फिर उन्हां नूं अवेयरनेस भी घट रह जाती है, क्योंकि देखो ITI सेक्टर दे विच ज्यादातर साडे जिहड़ा रूरल या कह लिए एरिया दे लोग जिहड़े हैं ज्यादा बच्चे इहदे विच आंदे ने,
1: हाँ जी,
0: ते उस तो बाद जिहड़े बच्चे हैं उन्हां नूं इन्नी रूरल एरियाज च तुहानूं भी पता है कि इन्ना इंटरनेट फैसिलिटी कह लो इहो जी ही हुंदी है कि उन्हां नूं नहीं अवेयरनेस हो जांदी हो पाउंदी हैगी भी कीहड़ियां पोस्टां ने, या
1: हाँ
0: असीं
1: जी,
0: कीहड़ी कंपनियां च जा सकदे हां, वड्डियां कंपनियां ने, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक दी कोई कंपनी है, ठीक है, तां ओहदे विच भी बड़ा इक रह जांदा है। कुछ एक होर चीज भी आ जांदी है,
1: हाँ
0: जिदा
1: जी,
0: ITI सेक्टर है मोस्टली ज्यादातर बच्चे जेड़े हैं ITI कर लेंदे, अपना खुद दा छोटा मोटा काम शुरू कर लेंदे हैं,
1: अच्छा जी,
0: ते उन्हां नूं ना एक बैरियर जा हो जांदा कि असीं किसी कंपनी च जाके काम करांगे या
1: हाँ
0: सानूं ओहदे
1: जी,
0: लई फिर सानूं अपना पिंड छड्डना पऊगा, या फिर सानू ओहदे लिए अपना जिला छड़ना पौगा या फिर वो ये पंजाब छड़ना पौगा, क्योंकि काफी पंजाब तो बाहर भी इस दिया जड़िया सीट्स ने अवेलेबल, काफी डिमांड हैगी है जड़ी,
1: अच्छा जी,
0: तो बच्चे अपने घरां नू छड़ के बाहर नहीं जाना चाहते, तो वो इस करके अपना इधर ही देखते हैं कि असी खुद का काम शुरू कर
1: अच्छा
0: लिए।
1: एक गल दसो भी जिहड़े लड़कियां दे लई इस खेत्र दे विच की भविख हैगा, उन्हां लई किस तरह दे कोर्स ने, कोई लड़कियां लई विशेष कोर्स ने जां यही कोर्स उन्हां लई हैगे ने?
0: नहीं, लड़कियां दे लिए विशेष कोर्स तां आपां ये कह सकते हैं कि जिवें इत्थे सीविंग दा हो गया, सीविंग कटिंग दे कोर्सेज हो जांदे ने
1: अच्छा जी,
0: काफी। हाँ जी, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड दे विच काफी जांदियां ने कुड़ियां,
1: अच्छा
0: ते
1: जी,
0: एक स्टेनोग्राफी इंग्लिश जिहड़ा ट्रेड है ओहदे विच ये भी एक कॉमन कोर्स असीं कह सकते हैं
1: हाँ
0: कि
1: जी,
0: कुड़ियां कर सकदियां ने, क्योंकि इहदे विच काफी बच्चे जांदे हैं, गर्ल्स भी ज्यादा मात्रा विच जांदियां ने।
1: हाँ
0: ठीक
1: जी,
0: है, बाकी जिहड़े कोई इदां दा बैरियर नहीं है, जिदा मोटर मैकेनिक हो गया, इदां दे कोर्सेज ज्यादातर मेल्स ज्वाइन करदे हैं, बॉयज ज्वाइन करदे हैं,
1: अच्छा जी,
0: बट जिदा सीविंग कटिंग हो गया या फिर अपना स्टेनोग्राफी इंग्लिश हो गया, इंटीरियर डेकोरेशन डिजाइनिंग हो गया, नेटवर्क टेक्नीशियन हो गया, ठीक है,
1: अच्छा जी,
0: इदां दे काम हैगे हैं जिहड़े कुड़ियां भी अप्लाई कर सकदियां ने कोर्स ट्रेड, या फिर इलेक्ट्रिशियन दा भी कुड़ियां काफी करदियां ने।
1: काफी
0: तां
1: वधिया, कुड़ियां लई खेत्र वधिया हैगा।
0: हां जी, हां जी, बिल्कुल।
1: होर कोई गल जिहड़ी तुसीं दसनी चाहुंदे हो इस खेत्र बारे?
0: इस खेत्र दे विच ये है कि देखो जिद्दां मैं तुहानूं पहलां दस चुकी हां कि जिहड़े बच्चे हायर एजुकेशन च जाना चाहुंदे ने, देखो इक चीज दा जरूरी तौर ते है कि पहला डिसाइड कर लेना चाहिदा बच्चे नूं कि मैं प्राइवेट सेक्टर च जाना है या फिर मैं गवर्नमेंट सेक्टर च जाना है, या
1: अच्छा
0: कि मैं
1: जी,
0: अपना खुद दा रोजगार खुलना है, कुछ भी अपना
1: हाँ
0: स्वयं
1: जी,
0: रोजगार बनाना, कुछ भी अपना बिजनेस वगैरह करना है, फिर ओहदी तैयारी उस अकॉर्डिंग होएगी।
1: अच्छा जी,
0: जिदां जे कोई बच्चा चाहता है कि मैं पब्लिक सेक्टर दे विच जाना है, गवर्नमेंट सेक्टर च जाना है, तां उहनूं थ्रेटिकल अपना बड़ा रखना पऊगा, मजबूत रखना पऊगा नाल नाल, क्योंकि ओहदे विच बच्चे नूं टेस्ट देना पऊगा, वो टेस्ट कढ़ने पैणगे, ते नाल दी नाल उहनूं अप टू डेट रहना पऊगा वी कहड़े टेस्ट आ रहे ने, उहनां दी तैयारी नाल दी नाल करदे रहना पऊगा। 2 साल दे दौरान जदों ओहदे ओहदा आईटीआई जद तक कोर्स कंप्लीट होगा, ओहदे नाल नाल ही उह बच्चा या तो चलो जे जेकर वो बच्चा अंडर एज है तां वो डिप्लोमा कर सकदा है, अगर वो एज ओदी 18 तक हैगी है तां वो बच्चा फिर पीडब्ल्यूडीज दे अंडर या फिर कोई भी इदा गवर्नमेंट पीएसयूज दे अंडर निकले हुए टेस्ट ने जेडे वो अप्लाई कर सकदा है, ओदी तैयारी नाल दी नाल करी जावे।
1: अच्छा जी,
0: बट जिवें आपां प्राइवेट सेक्टर दी गल करदे हां, जेकर बच्चे ने
1: हाँ जी,
0: प्राइवेट सेक्टर च आना है तां उहनूं बच्चे नूं थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज दे विच तेज होना पऊगा, प्लस ओदी कम्युनिकेशन स्किल्स जिहड़े हैं बहुत मैटर करते हैं।
1: अच्छा एक मिनट, मैं ये दसो भी जिहड़े वोकेशनल जिहड़े कोर्स हुंदे ने ते आईटीआई, इहनां दोनों दे खेत्र विच की फर्क हैगा?
0: वोकेशनल कोर्सेज जिहड़े के स्कूल्स दे दौरान बच्चे लै लैंदे आ, जिदा कटिंग सीविंग दे भी काफी हुंदे आ, या फिर इसे दे नाल मिलदे जुलदे काफी सारे हो जांदे, इलेक्ट्रिशियन वेल्डर इलेक्ट्रिशियन वगैरह वाले भी आ जांदे आ, तां उहनां दा फायदा ये हुंदा कि जिहड़े बच्चे आईटीआई ज्वाइन करना चाहुंदे आ
1: हाँ
0: उहनां
1: जी,
0: दे लई उह इक प्लेटफॉर्म इक बेस बन जांदे आ,
1: अच्छा जी,
0: उहनां नूं उहनां बारे पहलां ही नॉलेज हो जांदी है ना।
1: अच्छा जी,
0: ते जिहड़े बच्चिआं ने मान लो आईटीआई या फिर उद्योगिक खेत्र दे विच जाना नहीं है, या फिर
1: हाँ
0: उहनां
1: जी,
0: ने अगे ग्रेजुएशन करनी है या फिर हायर स्टडीज दे विच कुछ भी होर करना है, तां इहो जे बच्चिआं दे लई सिंपल अपना 10th तक या फिर 12th तक अपनी सिंपल स्टडी करन दे विच ही बेहतरी है उहनां दी।
1: अच्छा जी,
0: हां जी,
1: मैडम साहिबाना जी, तुसीं बहुत वधिया जानकारी साडे स्रोतियां दे नाल सांझी कीती, तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद।
0: धन्यवाद जी,
1: हाँ
0: थैंक
1: जी,
0: यू
1: स्रोतियां दा असीं धन्नवाद करते हैं जिन्हां ने साडे प्रोग्राम नूं बड़े प्यार नाल सुणिया, तो
0: जी,
1: अगली बार फिर मिलांगे प्रोग्राम सिक्ख्या ते रुजगार दे विच। तुहाडा सारयां दा बहुत बहुत धन्नवाद। मैं सुखबीर जोगा अते दुआबा रेडिया वल्लों शुक्रिया जी।